are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग दस मॉर्निंग हर जीत तमीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में तुम क्या मिले फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऑन रेडियो 106.3 FM. मुझे अभी जब मैंने डेट बोली मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ सो या दैट इज वन थिंग आई नीड टू डू आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड अगर आपके भी किसी फ्रेंड का या फिर यू नो किसी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है डू नॉट फॉरगेट टू विश देम ओके जी अब बताइए आपकी क्या हाल चाल है कल का दिन कैसा रहा पूरा एंड आज क्या प्लान्स है अभी उठ चुके हैं बस अभी ही उठे हैं या फिर ऑलरेडी काम के लिए निकल चुके हैं बताइए मुझे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे दिस ब्यूटिफुल ट्रैक मुझे इनिशियली बिल्कुल नहीं पसंद आया था बट जितना ज्यादा सुना ना इट ग्रू ऑन मी एंड नाउ आई कांट स्टॉप लिसनिंग टू दिस वन

0: This one's a reminder for you. Keep dreaming, Meri Jaan, and keep working towards them, and eventually you're gonna achieve what you want in your life.
1: Humme tumse mohabbat hui hai, oh jaane man, do you know?
0: Batao, do you know? Nahi, roz bata rahi hu main aapko, fir bhi nahi mante ho yaar. Sometimes I feel कि कोई भी ऐसे खूबसूरत सा रोमांटिक गाना हो, किसी ने भी गाया हो, उसका एक शिल्पा राव वर्जन तो होना ही चाहिए. क्या बोलते हो, क्या वोट है आपका इस बात पे? क्योंकि क्या सुंदर आवाज है यार इनकी.

The iconic Rehna Hai Tere Dil Mein movie se Bombay Jayashree ki awaaz mein ye bhi aane wala hai. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. Ji haan, hamari jo ye puri 4 ghante ki ride hai, isme aur bhi kamal ke gaane aapko sunne ko milenge. Dher sari baatein hum karenge. Main apna haal bataungi, aap apna haal batayenge. Desh ki, duniya ki, sab jagah ki baat karenge. Lekin sabse pehle aapki baat karenge. To aaiye message kijiye 3311-1063 par. Bataye kaise hai, kya haal chaal hai, kya chal raha hai is waqt. Bus mein hai, जा रहे हैं ऑफिस, ड्राइव कर रहे हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, निकलने वाले हैं, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, आई वांट टू नो. मैसेज कीजिए 3311-1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान.

0: तनिषा
1: शलभा राव की बिल्कुल ऐसी रूहानी सी आवाज, क्या इट फील्स सो काम व्हेन यू लिसन टू शलभा रावज़ वॉइस, राइट? वो कोई भी गाना गा दे, इट इज Absolutely beautiful. Tanisha ke saath hai aap Radio 106.3 FM par Bindaas Mornings chal rahe hain yahan par, and we have got good morning messages. So Shashikant Panel ji ka message aaya hai, may your day be beautiful, happy and filled with lots of love. Good morning, wishing the same for you ji. Sandhu ji ka bhi message aaya hai, good morning, I hope you have a fantastic and productive day. Harpal Sandhu from Zikrit, the country of Bindaas. एंड साथ में मुझे गणेश जी का मैसेज आया है और उन्होंने मुझे एक ऑडियो नोट भेजा है जो कि मैं सुन के आपको बताऊंगी, ठीक है. लियाकत जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग जी, एंड मैंने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो वो बता रहे हैं कि वो ड्राइव कर रहे थे. सुने, जरा आराम से ध्यान से ऐसे रोड पे फोकस होना चाहिए, फोन वोन यूज नहीं करना है. आई होप आपने मुझे मैसेज रुक कर ही किया था, गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इंपॉर्टेंट हो, अपना ख्याल रखा करो यार. और इमरान जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग तनिषा, This is the time to hit the airwaves and spread the magic. Wishing you a supercharged morning on the radio. Thank you so much. This is the fuel, you know. इधर से ही तो एनर्जी आती है, इसीलिए और भेजते रहो. बिलाल जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, बस एक ही था दिन है वीकेंड में, इसी बात की तो खुशी है. आप सुन पा रहे होंगे ना कि मेरी आवाज में जो एनर्जी है उसका लेवल ऐसे थ्रू आउट द वीक बढ़ता जाता है, और थर्सडे आते तक तो क्रेजी माहौल हो जाता है भाई साहब इधर. बट या इट इज वेंसडे टुडे, कल थर्सडे है. ऐसे खिड़की में से उचक उचक के हमें वीकेंड देख रहे हैं, और मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है. इसी बात पे आज के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
2: Cool song.

0: Tanisha.
1: Tanisha. आ गई, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM, तनिषा आ गई जी आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और गणेश जी ने जो मुझे वॉइस नोट भेजा था वो मुझे बता रहे थे कि वो साइट पर जा रहे हैं. तो यार, टू ऑल द पीपल यू नो जो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने काम के लिए निकल जाते हैं, हमारी लाइफ्स को ईजियर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जो सुबह की प्रेशियस नींद होती है उसको गवा के आप अपने काम के लिए पहुंच रहे हैं. आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे, एकदम बढ़िया मस्त दिन जाए आपका, सब ठीक ठाक रहे. और अगर यू नो बाहर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, इट इज़ क्रेजी राइट नाउ द वेदर. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ जी. एंड आई रेड समथिंग यस्टरडे एंड इट जस्ट क्लिक्ड विद मी एंड आई वॉज लाइक लेट मी शेयर इट विद यू. सो देयर वॉज दिस कोट विच सेज, If somebody is not behaving well with you, they probably are wounded. And वो कहते हैं ना कि किसी का गुस्सा ऐसे suddenly किसी का आपके ऊपर गुस्सा कर देना या फिर for no reason mean या rude हो जाना, it has nothing to do with you. उस चीज़ का, उस reaction का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है. उनके अंदर एक अलग ही जंग चल रही होती है जिससे वो जूझ रहे हैं, and somehow आप थे वहाँ पे, वो आप पे निकल गया. That's all. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ही नाराज है या आपकी वजह से हर्ट है. समथिंग और दी अदर थिंग सबकी जिंदगी में चल रहे होते हैं यार. सो दैट इज आई कीप सेइंग जस्ट बी काइंडर एंड यू नो एक छोटी सी स्माइल भी पास कर दोगे टू अ स्ट्रेंजर, उनका दिन बन जाएगा. व्हेनेवर लाइक आई एम पासिंग बाय और मुझे कोई देख के ऐसे स्माइल कर देता है ना, हम लाइक हाउ स्वीट, बिकॉज बहुत रेयर हो गया ये, हम स्माइल करना ही भूल गए. So smile more, okay, and be more kinder to others and to yourself. Okay? And stay tuned. Jio Bindas.

0: Tanisha. Faris Shafir, Zulfiqi Awaz mein Blockbuster only on Radio Ola 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain. Yahan par aur waqt ho chuka hai.
1: Radio Ola presents Blackboard Stories.
0: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज का सवाल बहुत आसान है एंड बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पसंद है, इसे खेलना. इनफैक्ट बड़ों को भी पसंद है. एक टॉय है जिसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं कि वो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था. उसको बनाने का, इन्वेंट करने का कोई इरादा नहीं था, पर वो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था व्हाइल ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉलपेपर क्लीनर. अब वो कौन सा टॉय है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे बच्चे खेलते हैं एंड किड्स एंड एडल्ट्स बोथ लाइक इट. यस, आपने ये मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. विच टॉय वॉज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली वाइल ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉलपेपर क्लीनर. यस, माइंड इट, वॉलपेपर क्लीनर, नॉट इवन द वॉलपेपर. सो या मुझे नाजनी जी का मैसेज आया. नाजनी जी आज लेट हो गई है यार. सबसे पहले मेरे आने के भी पहले ना नाजनी जी का मैसेज होता है, बट टुडे शी इज अ बिट लेट. कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है मेरी जान. ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन. व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड व्हाट वी डू टुगेदर डिफाइंस अस इनडीड. सो एज आई सेड, बी काइंडर टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स एंड दैट्स हाउ यू गोना मेक योर डे बेटर. इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेज का, जल्दी से आ जाओ. और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में हाँ तू है. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
2: Radio

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं

0: मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Amir Jamal Gawaz mein kaho na kaho from the movie Mother only on Radio Ale 106.3 FM Danisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par
1: Radio Ale presents Blackboard Stories
0: तो आज का जो सवाल था वो ये था कि विच पॉपुलर टॉय वॉज इन्वेंटेड बाय एक्सीडेंट वाइल ट्राइंग टू मेक अ वॉलपेपर क्लीनर. सो मुझे अरहम का मैसेज आया है यहाँ पे, ही सेज बबल रैप. नो, इट वॉज एक्चुअली सपोज टू बी अ वॉलपेपर बबल रैप, बट आई वॉज आस्किंग अबाउट द वॉलपेपर क्लीनर एंड इट इज प्ले डो. यस, प्ले डो जिससे बच्चे खेलते हैं ना, और मुझे भी बड़ा मजा आता है उससे खेलने में. माई गॉड, वेन एवर आई गो टू यू नो दी स्टोर्स जहाँ पर ये सब चीजें मिलती है बच्चों के टॉयज इन ऑल एंड आई सी प्ले डो, मैं उठा के ले आती हूँ. यस आई डो दैट. सो या प्ले डो पहले एक वॉलपेपर क्लीनर होने वाला था बिकॉज अर्लियर जो है घर कोल के हीटेड होते थे विद कोल्स, तो वो जो वॉल्स होती थी दे वर कवर्ड इन सूट एंड उसको क्लीन करने के लिए दे थॉट कि अच्छा ये शायद काम कर जाएगा. बट देन इवेंचुअली स्कूल टीचर ने नोटिस किया एक कि यार ये तो परफेक्ट है बच्चों के लिए टू मॉडल एंड क्रिएट शेप्स, और उनकी लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ेंगी इससे और क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी. सो दैट्स हाउ इट बिकेम प्ले डो टू प्ले विथ. एंड लेटर ऑन केमिकल्स भी उसमें से रिमूव कर दिए गए थे बिकॉज बच्चों ने खेलना था तो उनके लिए सेफ होना चाहिए. सो या दैट्स प्ले डो फॉर यू. यहाँ पे मुझे मुसर्रत जी का एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया, आइए सुनते हैं.
2: हाय, गुड मॉर्निंग तनीषा.
0: गुड मॉर्निंग,
2: कैसे हो आप?
0: बिल्कुल बढ़िया.
2: मेरा नाम मुसर्रत है
0: जी.
2: और मैं इंडिया से हूँ, हिमाचल प्रदेश चंबा से.
0: ब्यूटीफुल.
2: मैं अभी खरतियात में आई हूँ, बस अपनी लेबर ड्रॉप करके वापस जा रही हूँ. तो काफी इंजॉय कर रही हूँ. इतनी दूर है, आप अकेले जाओ बोरिंग लगता है.
0: जी, जी.
2: बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले कर रही हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको खुश रखे.
0: थैंक यू सो मच मुसर जी, दैट वाज सो स्वीट ऑफ यू. और कितनी भी दूर जाओ हम हैं आपके साथ ही. आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? बस रेडियो ऑलिव को ट्यून इन करना है और जब वक्त मिले और मौके की नजाकत को देख कर फोन उठा के ऐसे ही मैसेज कर देना है, ठीक है? 3311 1063 इज द नंबर. स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान. तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास.
4: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: सुनिए हर सुबह 6 से 10 RJ Stan Nisha को बिंदास मॉर्निंग में.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: तनिषा
1: लुटपुट गया फ्रॉम द मूवी डंकी। देखो भूल के तो नहीं मन्नू को विलेत यही छोड़कर आया था, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। You know the answer to this. I do not like this weather. दो आज humidity कम है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी कम है। Right now the temperature is 35 degrees and it feels like 46. ये कौन सा math हो रहा है दुनिया में? 35 को 35 फील करने दो ना यार, 35 को 46 क्यों फील करा रहे हो? इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड एयर क्वालिटी इज काइंडा अनहेल्दी, सो प्लीज अपना ख्याल रखें। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज जा सकता है और लोएस्ट विल बी 33 जो कि रात को ही होगा। बट पूरा दिन ऐसे हेजी सा रहने वाला है वेदर, सो हूएवर्स ड्राइविंग बी वेरी केयरफुल मेरी जान। ऐसे सड़कों पे ध्यान रखने का है, फोन वोन नहीं यूज करना है व्हेन यू आर ड्राइविंग, ठीक है? इफ यू वांट टू मैसेज मी, मैं इंतजार कर लूंगी ना यार, जब ऐसे लाइट पे रुक रहे हो या फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो वहां जाके कर देना। नंबर याद रख लो 3311-1063। बाकी अपना ख्याल रखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे एंड इरशाद कामिल साहब ही कर सकते हैं ये, एक ब्रेकअप सॉन्ग को इतना फन और एनर्जाइज बना सकते हैं। चोर बजारी फॉर यू फ्रॉम द मूवी लव आजकल, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: तनिषा
1: एक चालीस की लास्ट लोकल से लारी चुटी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और भाई कतर म्यूजियम्स का जो तमकीन प्रोग्राम था उसने जीता है स्टार ऑफ द फ्यूचर अवार्ड एट 2026 ग्लोबल चैलेंज फॉर वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन इनोवेटिव केसेस एंड दैट इज सच अ ह्यूज थिंग. ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है इनोवेटिव हेरिटेज एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को जिसमें स्ट्रांग पोटेंशियल होता है टू क्रिएट अ लास्टिंग इम्पैक्ट जो कि तमकीन प्रोग्राम ने किया है. एंड ये जो प्रोग्राम है ये यूथ को एम्पावर करने पे फोकस करता है टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज. वी ऑल नो कि कतर अपने कल्चरल हेरिटेज को लेकर कितने पजेसिव हैं एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. हर चीज़ में वो साथ लेकर चल रहे हैं. दे आर यू नो लाइक ग्रोइंग एडवांसिंग बट जो एक उनकी रूट्स हैं जो उनका हेरिटेज है उसको साथ लेकर चल रहे हैं एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कतर एंड दैट इज वाई आई एब्सोल्युटली लव इट. सेंडिंग अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक विच यू आर गोना लव टू जावेद अली साहब की आवाज में तुम तक फ्रॉम the movie Ranjana only on Radio All at 106.3 FM. Jio Bindas meri jaan.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

You're listening to Radio Ali 106.3 FM Tanisha aapke saath Bindaas Morning chal raha hai yahan par aur khadke glasses suna aapne bada hi mazedar gana hai aur abhi jo main baat batane wali hu wo bhi bahut amazing hai Dyson ke bare mein hum sab jante hai na hair product kafi viral hai aur hair care product basically kafi viral hai and women specially are crazy about it ki Dyson gift mein mil jata to zindagi safal ho jayegi type situation ho gayi hai but उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है सो द गाय बिहाइंड दिस एंटायर ब्रांड डायसन इज जेम्स डायसन एंड उन्होंने अपना जो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाया था वो पहली बार में नहीं बना था वो दूसरी बार में भी नहीं बना था वो तीसरी बार में भी नहीं बना था 100th टाइम में भी नहीं बना था इट टुक हिम 5127 ट्राइज तब जाके फाइनली जो वो प्रोडक्ट इमेजिन कर रहे थे चाहते थे वो बन के आया था एंड यू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन द एफर्ट्स ही पुट उन्होंने गिव अप नहीं किया दैट्स व्हाई 5127 ट्राइज के बाद जाके वो सक्सीड हुए उस 5128 टाइम में पर इमेजिन अगर वो फर्स्ट 100 में गिव अप कर जाते तो हमारे पास आज वो डायसन नहीं होता ना ही हमारे पास उनके अमेजिंग वैक्यूम क्लीनर्स होते ना हेयर केयर प्रोडक्ट होते एंड सो मेनी थिंग्स दे आर मेकिंग आउट यार और बहुत क्रेजी प्रोडक्ट्स है बहुत अमेजिंग ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर गोल फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक बार फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे होगा ही नहीं उस फेलियर को ना एज अ लेसन लीजिए यू नो कि नेक्स्ट टाइम हमें ये गलती नहीं करनी है दैट्स व्हाट ही डिड वो उन्होंने वो 5127 प्रोटोटाइप्स बनाए और हर बार एक नई चीज उन्हें पता चलती थी कि अरे ये नहीं करनी है मुझे तो नेक्स्ट वाले प्रोटोटाइप में वो नहीं करते थे एंड दैट इज रियली इंस्पिरेशनल एंड कमेंडेबल क्योंकि दैट टीचेस अस कि भाई फेलियर तो आएंगे जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जिंदगी में भी आए हैं पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने वहां पे गिव अप नहीं किया दे टुक इट एज अ लेसन उन्होंने उसे इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और आगे बढ़े उसके साथ दैट्स व्हाट वी आल्सो हैव टू डू मेरी जान ठीक है सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा दस मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindaas Morning chal rahe hain yahan par. Jubin Nautiyal ki awaaz mein Marjawa movie se kitna sona beautiful gaana suna aapne. And Sidra Medicine ne ek bahut hi kamaal ki jo service hai wo launch ki hai. That is Women's Private Home Visit. Midwifery care program hai basically ye. So postnatal care bahut zyada zaruri hoti hai for new mothers, right? Newborn baby ke saath itni sari nayi cheeze seekhni hoti hai. To usme ye bahut zyada kaam aayega. Through this program they can get the personalized care from experienced midwives. उनके घर के कंफर्ट में, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कंफर्ट में रहकर दे कैन यू नो एंड गेट द प्रॉपर केयर. और फ्यूचर में भी उन्हें वो बहुत काम आएगा और रिकवरी बहुत जरूरी होती है, सो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा. सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. चेकआउट कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑल टू यू बिंदास. रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात ये बात है.

0: Shock.
1: Adnan Sami aur Sunidhi Chauhan ki awaaz mein from the movie Ajnabi only on Radio 106.3 FM Tanisha aapke saath Bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur National Planning Council ne in collaboration with Civil Service and Government Development Bureau ek jo survey hai wo launch kiya hai Government Service Satisfaction Survey So it is for all of us theek hai ye survey jo hai it aims to collect feedback from citizens and residents ki jo bhi government services yahan pe provide ki ja rahi hai uska experience aapka kaisa raha hai aur iska jo slogan hai wo hai your voice makes the difference so basically authorities ko chahiye ye feedback aur survey ka jo result hai wo they want to just improve the quality of government services enhance the customer experience और एफिशिएंसी और जो इनोवेशन है सर्विस डिलीवरी में उसको और भी बेहतर करना चाहते हैं और ये सारा कुछ अलाइन करता है किससे कहता नेशनल विजन 2030 से एंड द थर्ड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से और दे जस्ट वांट टू मेक ऑल द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द पीपल यू नो आपकी क्या ज़रूरतें हैं आप क्या चाहते हैं कहाँ पे और फिजिबिलिटी चाहिए वो सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं एंड अकॉर्डिंगली देर विल बी चेंजेस इन देम सो डू टेक पार्ट इन दिस सर्वे एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

0: कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: देखो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है. दस बहाने फ्रॉम द मूवी दस इन द वॉइस ऑफ केके एंड शान ओनली ऑन रेडियो 11.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. वैकी विजडम में हम बात करेंगे पिंकी स्वेयर की. यू नो हमने कोई भी प्रॉमिस कर रहे होते हैं बचपन में भी वी यूज टू डू एंड हम बड़े होके भी कर ही लेते हैं वैसे है ना. पिंकी स्वेयर यार आई विल डू दिस फॉर यू ऐसे जब भी कोई प्रॉमिस करना होता है. तो पता है ये पिंकी स्वेयर एक्चुअली आया कहाँ से है. इट कम्स फ्रॉम जापान और उसका जापान में इसे बोलते हैं यूबिकिरी. और इट वॉज सो लाइक सीरियस लोग इसको इतना सीरियसली लेते थे कि अगर पिंकी स्वेयर करके किसी ने कोई प्रॉमिस कर दिया है तो वो तो टूटना ही नहीं चाहिए. बिकॉज वहाँ पे ये ट्रेडिशन था कि अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा आपने जो कहा था आपने वो नहीं किया पिंकी स्वेयर करने के बाद भी तो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो काट दी जाएगी. जी हाँ यू विल लूज इट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पिंकी स्वेयर. हम तो हवा में ही कुछ भी बात पे बच्चों के साथ भी कर देते हैं ना टालने के लिए उस वक्त पे. सो नेवर डू दैट. यू शुड बी टेकिंग इट सीरियसली. नेक्स्ट टाइम किसी को पिंकी स्वेयर करोगे ना तो याद रखना कि जापान में क्या होता था ये करने पे और उसे पूरा ना करने पे. और एनी विच वेज इफ यू आर प्रोमिसिंग समवन समथिंग तो वही चीज प्रोमिस करो जो कर पाओ. जो नहीं कर पाओ ऐसे हवा में क्यों वादे करने हैं. नहीं करने होते. वैसे जो हवा में वादे करते हैं ना उसे कहते हैं कैंडी फ्लॉस प्रॉमिसेस. या स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: हम शकल से नीरज श्रीधर की आवाज में कॉल ट्यून ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. यहाँ पर जब ये गाना नया नया आया था ना, आई यूज टू एंजॉय दिस अ लॉट. बहुत ही कमाल की एनर्जी और मतलब मस्त फीलिंग है, एकदम ऐसे ओए होए टाइप्स हो जाता है. आपको हुआ क्या? वेल ओए होए होए तो आपकी कार भी बोलेगी जब आप उसे लेकर जाएंगे वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड पर. क्यों? क्योंकि हमारी कार को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है सही वक्त पर. जी हाँ, करवाते तो हैं पर वक्त लगा देते हैं. सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, इफ इट इज आस्किंग फॉर इट, प्लीज प्लीज उसे लेकर जाइए वाल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर, क्योंकि वहां पर आपको जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे और साथ में डिजिटल कार पासपोर्ट जिसमें आपकी कार की सारी सर्विस हिस्ट्री बहुत हैंडी होगी आपके लिए. सो वरेवर से कॉल कीजिए 7765 5954 पर, 7765 5954 पर, और अपनी विजिट बुक कीजिए. साथ में अगर आप वहां से ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको मिलेगा एक मजेदार तोहफा. तो फिर मौके पे चौका मार लो मेरी जान और सुनते रहो रेडियो जियो बिंद.

0: हसीना मान जाएगी से व्हाट इज मोबाइल नंबर, मैं अपना बता देती हूँ 3311063। बिंदास कभी भी मैसेज कर सकते हो, कॉल करना है 4444106। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और यार ऐसे तो कंपनीज बहुत बोलती है कि देखो तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा तो तुम लीव ले लो, और फिर उसके बाद एचआर का मेल आ जाएगा, दे वोंट बी ओके विद इट, उसके लिए सैलरी कट होगा, एंड लाइक लॉट्स ऑफ ड्रामा हैपेंस। बट एक चाइनीज कंपनी ने एक्चुअली एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की अपनी कंपनी में, एंड इट इज अनहैप्पी लीव। सो जब आप वो सिस्टम पे जाके अपनी लीव के लिए अप्लाई करोगे, वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा आई एम नॉट फीलिंग ओके राइट नाउ, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बट माय क्वेश्चन इज कि साल में कितनी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है। एंड एज फार एज आई नो माई सेल्फ आई माइट टेक क्वाइट अ लॉट। एंड यू नो लाइक आप रैंडमली ऐसे सिक डे लोगे तो आपको बहुत गिल्ट ट्रिप पे डाला जाता है। बट देन आई फील कि अगर कंपनीज खुद आपको ये लेवरेज दे रही है कि इट्स ओके यू आर मेंटली नॉट फीलिंग ओके राइट नाउ, बहुत ओवर एग्जॉशन हो गया है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, टेक अ डे, तो जब वो चीज़ हमें वहाँ से आती हुई नजर आएगी तो शायद हम फायदा ना उठाए उस चीज़ का। यू नो राइट नाउ इफ यू आर नॉट गेटिंग इट तो एक वो होता है कि यार सम हाउ कुछ जुगाड़ लगा के आई शुड डू दिस एंड दैट, बट इफ यू आर गेटिंग इट तो फिर नहीं होगा ऐसा। दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? अगर आपकी कंपनी में या अनहैप्पी लीव्स जो हैं वो आ जाए, इम्प्लीमेंट कर दी जाए, तो कैसा माहौल रहेगा? क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा लीव्स लेने वाला है, और व्हाट्स गोना हैपन? व्हाट डू यू थिंक? आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। 3311063 पर बताएं और सुनते रहे रेडियो ऑलिव। जीवनदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. मेरी महबूबा ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी परदेस सुना आपने. और मैंने पूछा था कुछ देर पहले कि एक चाइनीज कंपनी ने अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस की है अनहैप्पी लीव. इन केस ये जो लीव्स हैं आपके ऑफिस में भी सैंक्शन होने लग जाए तो क्या होगा, आपका क्या ओपिनियन है इस पे, ये जानना चाहती थी मैं. सो आई हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर. हेजल का मैसेज है, मैं तो पूरे साल की ही छुट्टी ले लूंगी क्योंकि नहीं हो पा रहा है. I absolutely understand, but ये तो फायदा उठाना ही हो गया ना मेरी जान. Then विक्की का मैसेज है, कह रहे हैं कि ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि एक साल में कितनी अनहैप्पी लीव्स ले सकते हैं वो बेटर होगा. ये क्वेश्चन तो वैसे मेरा भी था. ओके, कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि क्या हमें ये छुट्टी लेने के बाद भी सैलरी मिलेगी या फिर इट इज अ अनपेड लीव. आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक दैट एंड दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. बट आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. इट गोज हैंड इन हैंड. यू गॉट टू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयर, दे गॉट टू ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज एंड दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क. अदरवाइज यही सोचते रहेंगे आपकी ये हमारे पैसे काट देंगे, वो सोचते रहेंगे ये तो जबरदस्ती झूठी लीव ले रहे हैं. सो या आई फील दैट्स द ओनली वे इट कैन वर्क. इफ यू हैव एनी अदर सजेशन प्लीज बताएं 3311106 3 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

पिया का तो नहीं पता, तनीषा जरूर आ गई है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑन 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और वक्त हो चुका है मेरे जाने का। मेरी जान, कल लौट के आने की मुझे ज्यादा खुशी है क्योंकि कल है थर्सडे। यस, वीकेंड इज फाइनली हियर, तो कल ऐसे फुल जोश के साथ वीकेंड में एंटर करेंगे हम। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, ठीक है? स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए, अपने साथ रखिए अगर कहीं जा रहे हैं तो, लाइट खाना खाइए और बहुत सारा सनस्क्रीन लगा कर निकलो, ठीक है? आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये चीज कभी नहीं भूलनी है। अलोंग विद दैट, इफ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया, radioalu.qs is the handle, फटाफट से जाओ फॉलो करो, वहां पे नई नई चीजें हम पोस्ट करते रहते हैं, चेकआउट करो, इंटरैक्ट करो हमारे पोस्ट और वीडियो से, कॉन्टेस्ट चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, यू नेवर नो, यू माइट बी द लकी विनर मेरी जान। और अभी कशिश आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने चिल करने का है, मतलब यू नो डू योर वर्क। ऑब्वियसली ऐसे बोलोगे कि तनीषा ने कहा था चिल करना है, मैं आज काम नहीं करूंगा, नहीं, चिल एज इन छोटी मोटी चीज जो भी हो रही है ना उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग में उसको लोड लेने नहीं देना है, ठीक है? दैट ऑल यू हैव टू डू, एंड हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है
4: सलवा रोड पर वैल्वोलिन एएमटीसी क्विक सर्विस और नो टेंशन
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई
4: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं
5: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765595 वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी
6: This hour is brought to you by
7: Homes R Us. We complete your home.

बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिजीत जी, मतलब इससे ज्यादा सही ये कभी थे ही नहीं कि आप सब मेरी धड़कन में रहते हो एंड बीच बीच में धक धक धक धक धक धक धक धक करते रहते हो। वेलकम, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। एंड जैसे जैसे वीक जो है वो बीतता जा रहा है, हम इमोशनली फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, लेकिन गाइज यू नो अपनी एनर्जी गेन करने का, रीगेन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वेंसडे में आज हम बैठे हुए हैं, आज 5th August यानी वेंसडे है, बस एक और दिन, मतलब आज का दिन और कल का दिन और फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर से हम फन करेंगे, कपड़े धोएंगे, सफाई करेंगे, मजे ही मजे। देखिए कपड़े और ये जो सफाई है ये मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाती रहती हूँ ताकि मेरी मम्मी जो रेडियो पे सुन रही है उन्हें लगे कि हाँ उनकी बेटी जो है थोड़ा सफाई को लेके कंसर्न है। वैसे देखिए आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो मैं लेकर आई हूँ जिन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि अगस्त जो है वो मेरा बर्थडे मंथ है एंड हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है एंड आप सब ने भी मुझे बताया है व्हाट्सएप करके कि आप सबका बर्थडे भी आता है, तो आज हम बर्थडे पे ही डिस्कशन करने वाले हैं लेकिन थोड़ी सी देर बाद। उससे पहले जो है हम कुछ बॉलीवुड की न्यूज़ जो है उन पर ध्यान देंगे, उसके बाद जो है मौसम का हाल तो मैं अभी आपको आने के बाद बताने ही वाली हूँ। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अमेजिंग फैशन पर, बॉलीवुड में इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है, अपनी आप कार की केयर कैसे कर सकते हैं इस पर भी। लेकिन उससे पहले रिचुअल के हिसाब से कॉकटेल टू मूवी का माशू का गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, तो खुद को ये गाना डेडिकेट करते हुए जरा आगे बढ़ती हूँ मैं एंड आप ये गाना एंजॉय करके वापस आइए, उसके बाद हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। बस वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Metro, Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13. दैट इज 10:13. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: यही सेम चीज आजकल मैं अपने एसी से बोल रही हूँ कि तेरे बिन हम तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी इतनी है कि बिना एसी के रहना थोड़ा सा मुश्किल है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। एंड देखिए यार, इस वक्त बाहर ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि आप बिना एक रुमाल के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। नहीं, रुमाल आपका पसीना पोंछने के लिए, रुमाल जो है वो आपका चश्मा पोंछने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सो आजकल रुमाल को जो है एक एक्सेसरी की तरह आपको जो है कैरी करना चाहिए, वरना अपनी शर्ट से कब तक अपना जो है चश्मा पोंछते रहोगे। वैसे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इस वक्त मौसम कैसा हो रहा है, मौसम का मामला जान लेते हैं जरा। सो इस वक्त करंट टेम्परेचर जो है दोहा में 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। सनसेट जो है वो 6:16 के आसपास होगा, तो अगर आपको जो है सन यू नो लाइक सनसेट देखने का शौक है अपने लव्ड वंस के साथ, तो आप तब का प्लान बना सकते हो ऑफिस से थोड़ा आगे पीछे होकर निकल जाना। एंड बाकी ह्यूमिडिटी बहुत रहने वाली है, सो एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है घर के या ऑफिस के या अपनी कार के अंदर रहना एंड सनस्क्रीन लगाते रहना। सो फिलहाल इस हीट को बीच करने के लिए म्यूजिकल बीच का सहारा लेते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आर जो है उस पे ऐसे जंप मार देते हैं। सो ये गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो, और बाकी गाना सुन के जरा लौट के आना, कहीं और चले मत जाना, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग बॉलीवुड की यू नो गॉसिप मैं आपको देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहो, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
3: ओ जाने जा,

कई बार बेचैन तो मैं हो जाती हूँ ये सोचकर कि मतलब कुछ बनाने जाओ और कुछ बन जाता है. मतलब इस दुनिया की सबसे अमेजिंग चीजें वो ना ऐसे इंटेंशनली बनाई ही नहीं गई है, मतलब ज्यादातर तो नहीं बनाई गई है. वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं. अब देखिए यार, मैं बात कर रही थी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों की जिन्हें हम जानबूझ के प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन बातों बातों में एंड कुछ और बनाते बनाते वो बस बन जाती है. एक ऐसे ही मेरा फेवरेट गाना है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को, ओम शांति ओम मूवी का ये बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक है. एंड मतलब इस मुझे हमेशा लगता था यार ये किसका थॉट होगा. मूवी में तो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि शाहरुख खान जो है वो सोच रहे हैं कि क्या करें, मैं दर्द भरी कबाली कर चुका हूँ, अब क्या किया जाए क्या किया जाए, तो दर्द डिस्को कर लेते हैं. लेकिन मुझे लगता था कि यार ये असली लाइफ में कैसे सोचा होगा कि यार दर्द डिस्को करते हैं, जावेद अख्तर साहब ने कैसे दिमाग लगाया होगा. तो अभी रिसेंटली मेरे सवाल का जवाब जो है वो मुझे इंटरव्यू में मिल गया फराह खान के. सो फराह खान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बताया है कि दर्द डिस्को गाने की शुरुआत जो है वो सोनू निगम के घर पर एक पार्टी के दौरान हुई थी, जब वो लोग एक बर्थडे पार्टी पर गए हुए थे सोनू निगम के यहाँ. तब वहां पर वो लोग अलग अलग टाइप के पेन की बात कर रहे थे एंड तब वहां पर म्यूजिक और पेन को मिला के उन्होंने एक वर्ड बनाया जो जिसपे सब बहुत जोर से हंस देते हैं, एंड दैट वाज दर्द डिस्को. और फिर फराह खान जी ने ये बात जो है जावेद अख्तर साहब को बताई है, उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली जो है लिरिक्स लिखे हैं. एंड मैं कभी ये अपने सबसे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये नहीं सोच सकती कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के साथ उर्दू को जो है वो राइम कर दिया है. सो ऐसे बहुत अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं बॉलीवुड में. सो ये रिसेंट वाला एक इंटरव्यू में मुझे पता चला है. क्या आपको मतलब कोई गाना सुन के ऐसा लगा है कि भाई यार ये कहाँ सोचा होगा लिरिसिस्ट ने, बताओ मुझे 3311063 पर. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है रेडियो ओलिव।

तो आपने अपने रेडियो सेट्स पर सुना किंग को अपना दुख बयां करते हुए। मैं ज्यादा सीरियस रह ही नहीं सकती यार, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी आवाज अपनी हंसी कंट्रोल करके ये बात कहूं, क्योंकि बंदे ने इतने दुख के साथ इतने गम के साथ लिखा है, ऐसा लग रहा है कि इंक से नहीं आंसू से लिखे गए हैं ये लिरिक्स। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, गाने को गाने जैसे कंसिडर करेंगे, रोने धोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आपकी कसरत आ चुकी है। हाँ जी, आपके लिए लाइफ मस्त शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखिए यार, लाइफ मस्त तब होगी जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ के स्ट्रेसफुल लोगों को जो है नो बोलना सीखो। नो बोलना जब तक आप नहीं सीखोगे आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एंड सामने वाले को लगेगा कि ब्रो इसे तो मुझसे प्रॉब्लम ही नहीं है। That's why no बोलना बहुत important है, अपनी feelings को share करना बहुत important है। I know it's hard, but फिर भी share करो, सामने वाले को बताओ कि आपको दुखता है, वरना वो तो फिर आपको उनको तो नहीं पता चल रहा ना, उनकी भी गलती नहीं है। So सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ में no बोलना सीखो, चाहे वो आपकी workplace हो, चाहे वो आपकी relationship हो, चाहे आपके parents ही क्यों ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको no बोलना चाहिए कि नहीं पापा मैं नहीं करूँगा, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। खैर आप बोलोगे फिर वो आपको कुछ और बोलेंगे, फिर आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये रहेगा कि आपने कोशिश तो की। तो सबसे पहले तो नो बोलना सीखो, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होगा, आप ओवरथिंक करना कम कर दोगे, एंड आपका आधा गेम तो आप तभी जीत जाते हो जब आप ओवरथिंक कम करते हो। ऐसे गेम से याद आया कि आज का स्ट्रेस बस्टर का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कूल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो आपको करना ये है, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जब भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, आपको अपना फेवरेट गेम जो है वो डिसाइड कर लेना। जैसे मेरे ऑफिस में कुछ लोगों का कैंडी क्रश है, कुछ लोगों का कोई और है, कुछ लोगों का सुपर मारियो है, कुछ लोग पीएस खेलना चाहते हैं। अब पीएस तो आप हर वक्त नहीं खेल सकते, सो कोई ऐसा गेम आप जो है अपने दिमाग में रखिए जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जिसमें आप बहुत इंडल्ज हो जाते हैं, तो अपना स्ट्रेस आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। लेकिन एक कॉशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि गाइज मतलब स्ट्रेस जो है कम करने के लिए गेम खेलना शुरू करो और फिर गेम खेलते रहो कि कोई काम ना हो और फिर स्ट्रेस और बढ़ जाए, ये भी तो सही नहीं है ना। इसलिए हर चीज़ जो है वो कंट्रोल्ड तरीके से करें। अगर आप 5-10 मिनट के लिए कोई गेम जो है वो खेल रहे हैं तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा गेम खेलते हो तो फिर आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सो जैसे दवाई को हम एक कंट्रोल्ड तरीके से खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो स्ट्रेस कम करने के तरीके हैं इन्हें भी कंट्रोल करके ही करना है, वरना लोग समझेंगे कि आपकी ब्रेन में कोई केमिकल लोचा हो गया है। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। कुछ लोग हमसे गाने की फरमाइश कर रहे हैं, सर देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी गारंटी नहीं दूंगी मैं। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करके आइए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10, दैट इज 11:10. स्टे ट्यून्ड जियो विद अस.
2: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
3: हाय दिस इज अजय देवगन.
4: हाय दिस इज अक्षय कुमार.
5: हाय दिस इज अनुष्का शर्मा.
6: एंड आई एम अशोक वासी.
7: दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.

0: के टाइम पे गोविंदा की मूवीज के नाम जो है वो सिलेक्ट करने में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाते थे. मतलब जो भी सबसे मेजर, मतलब यू नो द थिंग जो भी उस मूवी में है, बस उसके आगे नंबर वन लगा दो. हीरो नंबर वन, आंटी नंबर वन, कुली नंबर वन, एवरीथिंग नंबर वन, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर वन. डेविड धवन और गोविंदा ने शायद ऐसे सोच के रखा था कि कोई और बोले या ना बोले हम ही नंबर वन बोल देंगे. यू नो जब कीवर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तब से ये कीवर्ड्स लिख रहे हैं. नंबर वन डाल दो फिल्म के नाम में, अपने आप जब भी कोई नंबर वन सर्च करेगा हम सबसे ऊपर आ जाएंगे. देख रहे हो, वे अहेड ऑफ द टाइम. वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं. अब देखिए यार, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि यार इस महीने बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है, हमारे ऑफिस में ही 6 लोगों का बर्थडे आता है एंड बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोगों का जो है हैप्पी वाला बर्थडे है. एंड इसी महीने में एक फादर डॉटर डुओ का बर्थडे आता है, दैट्स सैफ अली खान एंड सारा अली खान. एंड दोनों को जब पूछा गया कि यार बर्थडे का क्या क्या सेलिब्रेशन होने वाला है, तो सैफ अली खान ने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओवर हाइप्ड है बर्थडे पार्टीज. बर्थडे पार्टी करना जो है बहुत चाइल्डिश है, बहुत बचकाना सा लगता है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है. सो अब इतने बड़े होने के बाद बर्थडे पार्टी तो मैं थ्रो नहीं करूँगा. हाँ, अपनी क्लोज फैमिली के साथ डिनर विनर जो है वो कर सकते हैं. अब मैं आपसे जो है जानना चाहती हूँ कि क्या बड़े होने के बाद, या वो कौन सी उम्र है जिसके बाद बर्थडे पार्टी करना जो है वो मतलब ओवर हाइप्ड हो जाता है कि यार अब इतने बड़े हो गए हो, अब तो तुम बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते. कौन सी एज है वो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बर्थडे पार्टी जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो चाइल्डिश लगेगा. बताइए मुझे 3311063 पर, क्या आपको क्या लगता है, क्या बड़े होने के बाद भी बर्थडे पार्टी नहीं करनी चाहिए, या बच्चों को पहले से ही आदत नहीं डालनी चाहिए बर्थडे पार्टी की? आपका मतलब फुल ऑन इस पर क्या कहना है, बस ये मुझे बता दीजिए 3311063 पर, क्योंकि हो सकता है कि आपका ओपिनियन जो है वो मेरे बर्थडे प्लान्स को अफेक्ट करे. तो थोड़ा सोच समझ के बताइएगा 3311063 पर कि यार आपको क्या लगता है कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टीज हैं, ये क्या बहुत ओवर हाइप्ड हैं, क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो? बताइए मुझे. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: कूल सॉन्ग.

0: किस पे आएगी?
1: अरे हाय, कितना टाइम हो गया यार ये रेलवे स्टेशन वाला अनाउंसमेंट सुने हुए। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। अब देखिए यार, मेरा बर्थडे मंथ है और हो सकता है आपका बर्थडे मंथ भी हो, क्योंकि हमारे ऑफिस में 6-7 लोगों का बर्थडे जो है वो अगस्त में आता है, इसीलिए अगस्त में थोड़ी ज्यादा जो है बर्थडे वाली बात मैं करूंगी। तो अगर आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना एंड मेरे साथ जो है प्लीज सेलिब्रेट करने में मेरी मदद करना। अब देखिए कि काफी सारी सेलिब्रिटीज का बर्थडे जो है वो भी अगस्त में ही आता है। सैफ अली खान एंड उनकी डॉटर सारा अली खान, दोनों का बर्थडे जो है वो अगस्त में आता है एंड इसके चलते जो है उनसे जब पूछा गया कि यार बर्थडे पार्टी का क्या सीन है, उन्होंने कहा कि यार ये सब ना बहुत बचकाना है, बहुत चाइल्डिश लगता है बर्थडे पार्टी करना, तो मैं तो इसमें ना बिलीव नहीं करता। तो मैंने बस आप लोगों से ये पूछा था कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि बर्थडे पार्टी मनाने की कोई उम्र होती है या ये जो है बस बच्चों का काम है और एक उम्र के बाद आपको अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, या सेलिब्रेट करना चाहिए तो थोड़ा सटल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, और कैसे डिसाइड करते हैं कि अब वो उम्र आ गई है जब आपको सटल तरीके से अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना है। सो मैंने यही पूछा था मुझे एन जी ने जो है मुझे इनका नाम जो है पढ़ना नहीं आ रहा है, सो एक बार प्लीज आपका नाम प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो मुझे ऑडियो नोट में जरूर बता दीजिएगा, मैं इनका मैसेज पढ़ देती हूँ। सो इन्होंने ये लिखा है कि हेलो कशिश, देयर इज अ सेइंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर, सो फील फ्री टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑफ योर बर्थडे कम व्हाट मे, when you're happy others also became happy cause happiness is contagious. of course borrowed from Radio Olive, इन्होंने credit जो है हमें बिल्कुल दिया है इस saying के लिए and इनका मैं बहुत agree करती हूँ इनसे। जो चीज आपको खुशी देती है, birthday आपका दिन होता है, वो कीजिए, बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू मुशाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है। अगर आपके भी कुछ व्यूज हैं तो वो अभी भी आप हमें बता सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।

यार गुरु रंधावा जब इतना अच्छा गा सकते हैं तो ये गाते क्यों नहीं है? इन्हें क्यों गाड़ियों की तारीफ करनी होती है? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त हम बना रहे हैं। अब देखिए यार, हम बात कर रहे थे मेरे बर्थडे की, एक्चुअली मेरे बर्थडे की नहीं, हम सबके बर्थडे की, जिनकी जिनका भी बर्थडे अगस्त में आ रहा है, जनरली जो अपने बर्थडे को लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं। अब सैफ अली खान और सारा अली खान का जो हैप्पी वाला बर्थडे है वो भी इसी महीने में आता है, तो इनसे जब पूछा गया कि यार आप अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हो, इन्होंने बोल दिया देखो पार्टी तो हम नहीं करेंगे, ये पार्टी जो है बच्चे करते हैं, ये पार्टी वार्टी हम नहीं करते, हमें अगर आप फैमिली डिनर को बोलोगे तो वो कर लेंगे बर्थडे पे, लेकिन ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने में हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं। अब मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि यार इनके हिसाब से कि बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक उम्र होती है, कि यार चलो ठीक है कि इस उम्र तक आपने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद थोड़ा अजीब लगता है। सो मैं बस वही पूछ रही थी कि आपसे कि आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसा करते हो कि या एक उम्र होती है बर्थडे सेलिब्रेट करने की? बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। सो यूसुफ खान जी कैसे मैसेज नहीं करते, उन्होंने ये लिखा है कि यार देखिए अपने आप पर डिपेंड करता है और खुशी का मामला होता है बर्थडे सेलिब्रेट करना या ना करना। हम लोग पर्सनली सेलिब्रेट नहीं करते लेकिन छोटे बच्चे वो अपने बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। सो जब तक उन्हें वो एक्साइटमेंट बरकरार रहता है तब तक हम जो है उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद पर्सनल चॉइस है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट भी मुझे अच्छा लगा कि जब तक अगर आपको फील हो रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना आपको करना चाहिए, दैट्स इट, बाकी मुझे लियागत जी ने जो है हैप्पी बर्थडे कहा है, हैप्पी बर्थडे सैफ का है, ओ अभी सैफ जी का जी, देखिए हैप्पी बर्थडे आज नहीं है, आज काजोल जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, सो वो उस पर भी बात करेंगे हम लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल एक काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो इन्जॉय करते हैं, ऑल इफ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, गाने का नाम फिर अजनबी। Radio

मूवी का नाम द स्काई इज पिंक, बहुत ही अमेजिंग मूवी है एंड रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। वक्त मिले तो एक बार जरूर से देख लेना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। अब देखिए यार, मैं तो हूँ आपकी केयर करने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, लेकिन आपकी कार के लिए कौन है? कभी आपने सोचा, जिस कार को आप रोजाना इतना दौड़ाते रहते हो, वो जो है कभी आपसे गुहार अगर लगाए कि मुझे भी थोड़ी केयर दे दो, तो आप क्या करोगे? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको स्ट्रेट अवे उसे लेकर पहुंचना है वैल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर, जो सलवा रोड पे आपको मिल जाएगा। इस पर 150 इयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट है और यहाँ पर आपको जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे, प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और सबसे कूल चीज जो मिलने वाली है वो है ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट। इससे आपकी गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी, यानी नो पेपर वर्क। वो जो गाड़ी का डैशबोर्ड आप अलग अलग पेपर से भर के रखते हो ना, एंड जब वक्त पे आप ढूंढते हो तो आपको मिलता नहीं है, उससे आपको राहत मिलने वाली है। तो देखो जल्दी से विजिट करो एंड आप कॉल भी कर सकते हो 7765595 4 पर, 7765595 4 पर। बहुत अमेजिंग गुडीज भी आपको जो है वो मिल सकते हैं। सो देरी किस बात की यार, जल्दी से जाओ। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो एंड उसके बाद जो है हम फैशन की बातें करने वाले हैं। सो जल्दी से लौट कर आना, चांद मेरा दिल से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12, दैट इज 12:12। स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: हाय रेडियो ओलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
5: I'm in number one, रेडियो
6: ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हमारे शहर में मूवी से विशाल मिश्रा की आवाज में ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जो पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, अक्सर ना क्या होता है कि मैं क्या बोल रही थी ओके सो अक्सर ये होता है ना कि हम पुराने फैशन में ही अटके रह जाते हैं, दुनिया काफी आगे बढ़ जाती है। तो क्या आप वो इंसान है जो अभी भी अपने टैंक टॉप्स को टैंक टॉप की तरह पहन रहा है? तो आप अभी भी 2021 में जी रहे हैं, 2026 आ गया, लोग अब टैंक टॉप को टैंक टॉप की तरह नहीं पहन रहे, टैंक टॉप को अपनी शर्ट के ऊपर लेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स द न्यू ट्रेंड। हाँ जी, आपने कई बार तो ऐसे पहना होगा कि अपने टैंक टॉप को आपने पहना है और उसके ऊपर आपने श्रग ब्लेजर या शर्ट जो है वो पहनी है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब आपको जो है अपनी शर्ट पहले लेयर करनी है एंड उसके ऊपर अपना टैंक टॉप पहनना है। दैट विल वर्क लाइक अ कॉर्सेट और वो एक स्ट्रक्चर देगा आपके आउटफिट को और ज़्यादा बेहतर लगेगा आपका आउटफिट। आपका कोई भी बेसिक टैंक टॉप हो सकता है, अगर आपको आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या पहनूं, तो अपनी कोई भी वाइट या एक प्लेन शर्ट को लीजिएगा। शुरुआत हम प्लेन शर्ट से करेंगे ताकि ज़्यादा यू नो ज़्यादा ओवर ना हो जाए आपके हिसाब से। सो पहले आपको एक प्लेन बेसिक शर्ट लेनी है जिसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो एंड उसके ऊपर अपना स्लीवलेस क्रॉप टॉप या टैंक टॉप आप या कॉर्सेट टॉप बेसिकली, अगर आप उसे और मॉडर्न तरीके से जो है पेयर करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर पहन सकते हैं। इट विल लुक ट्रेंडी एंड इट विल सिंच योर वेस्ट। सो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से हम विंटर्स में यू नो स्लीवलेस स्वेटर्स हाफ स्वेटर पेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आप पेयर कर सकते हो एंड बहुत मॉडर्न तरीके से बहुत ज्यादा फैशनेबल आप दिख सकते हो। सो ये थी आज की फैशन अपडेट, फैशन के बारे में हमने बात कर ली है। अभी फिलहाल आपके लिए सजना हुई गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर है, इसे इंजॉय कीजिए। उसके बाद जरा और बातचीत जो है हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून, आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

टिपिकल मम्मी पापा की शादी के वीडियो में जो गाना यूज होता है वैसा वाला गाना है ये। मतलब मेरे मम्मी पापा की शादी में ये गाना यूज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये वही गाना है जो अक्सर लोगों की यू नो मतलब मूवी जो बनती थी शादी की, जो वीडियो होती थी उसमें यूज होता था। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैं जो है अपनी दोस्तों से रिसेंटली यही डिस्कस कर रही थी कि यार आजकल जो मूवीज आ रही हैं वो ना या तो बहुत हैवी ऑन हार्ट होती हैं, या तो बहुत हैवी ऑन ब्रेन होती है, या तो फिर दोनों पे ही असर नहीं करती है। एंड पता नहीं कुछ अलग सी ही होती है। पहले के टाइम पे कुछ ऐसी मूवीज आया करती थी जो हम अभी भी देखना पसंद करते हैं, वो हमारी कंफर्ट मूवी हो चुकी है। स्पेशली अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ, कॉमेडी अगर आप अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो ऐसी बहुत कम मूवीज हैं जो कि आप देख सकते हो एंड एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पर जो है वो बाहर आती है। काफ़ी सारी मूवीज जो है ये क्लेम करती है कि ओके ये फैमिली एंटरटेनर है, बट वो होती नहीं है। ऐसी एक मूवी आई थी जब बहुत छोटी थी और तब वो मूवी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, पर बाकी मेरी फैमिली वाले क्यों हंस रहे हैं इस मूवी, मुझे तो हंसी नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद जब मैंने कुछ दिन बाद वो मूवी देखी अभी कुछ दिन पहले, सो मुझे रिलेट जो है मैं रिलेट कर पाई अपनी फैमिली वालों से कि ओ अच्छा इसलिए हंस रहे थे ये लोग। मूवी का नाम है खोसला का घोसला एंड इसका पार्ट टू जो है, पार्ट टू मतलब इसका जो सीक्वल है या खोसला का घोसला जो टू है वो अब आने वाली है, इसकी शूटिंग में चल रही है। एंड काफ़ी सारी मूवीज होती हैं जिनकी शूट जब खत्म होने वाली होती है तब प्रमोशन वो शुरू करते हैं, लेकिन इस मूवी की शूट चल रही है एंड इसके बीच में काफी ट्रेंडिंग वीडियोस जो है वो पूरी कास्ट बना रही है एंड जिन्हें देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके चलते जो मूवी की जो पुरानी मूवी की जो क्लिप्स थी वो भी काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। सो आप मुझे बताइए कि आपने खोसला का घोसला मूवी जो है वो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो एक बार प्लीज एक बार जाकर जरूर देखो, आपको YouTube पे भी मिल जाएगी तो जाकर एक बार जरूर से देखो। और फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना, मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी फिर हेरा फेरी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए एकदम फन करते हुए, इस गाने को वाइब करते हुए इंजॉय कीजिए। बाकी मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में लौट के, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

वही सोनिया गाना एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि यार देखो थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना। आप लोगों से बातचीत करने के एक्साइटमेंट में ना चाय पी मैंने ना पानी पिया मैंने, ऐसा थोड़ी होता है। तो जाती हूँ बाहर चाय वाय पी के आती हूँ। बाकी अगर आपको मेरी याद सदा है तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर फॉलो बटन दबा देना यार, वहाँ पे आपको हम सभी आरजेज मिल जाएंगे, हम सबकी प्रोफाइल्स मिल जाएंगे और बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से आओ फॉलो कर लो। बाकी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलानी है, खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास टाटा बाय बाय टेक केयर।

0: Pampanga's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो ओलिव, नंबर वन. ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और ये है ऑलिव रिचार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बांध रखी है तो फिर कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए हम भी जरा ऑलिव रिचार्ज को किक स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदा।

0: जानी सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के जमाने में जब दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है आगे कुछ ना कुछ पाने के लिए। अगर हम अपने बारे में ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा ध्यान। इसलिए कुछ सेल्फ केयर टिप्स लेकर मैं आया हूँ यहाँ पे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, हो सके तो पेन पेपर निकाल के रख लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहला टिप है खाली बैठना। जैसे दिलजीत पाजी ने बोला कि भाई कुछ नहीं करना चाहिए, 10 मिनट निकालिए भाई अपने दिन में और ऐसे ही बैठ जाइए, बिना फोन चेक किए, बिना कुछ रीड किए, बिना कुछ गाने सुने, बस बैठ जाइए। मुश्किल होगा मगर आपको मजा आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। और एक चीज आप कर सकते हो वो है आप डिजिटल सनसेट आवर्स जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, यानी कि सोने के 2 घंटे पहले सारे डिजिटल डिवाइसेस को टर्न ऑफ कर देना या फिर उन्हें हटा के रख देना, ताकि आपका सर्कैडियन रिदम जो है बिल्कुल बढ़िया रहे। उसके साथ साथ एक चीज आप कर सकते हो वो है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप वो होता है जब अपने ब्रेन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं आपके उसको आप एक पेपर में लिख दो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सोच के, बस जो आ रहा है मन में बस लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। और एक फिजिकल रीसेट के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में गानों के उस पार। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे सेल्फ केयर के बारे में। कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताए थे, अब फिजिकल रीसेट के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल साइज, यानी कि एकदम से जल्दी जल्दी दो इनहेलेशन आपको लेने हैं और एक बहुत ही लॉन्ग स्लो एक्सहेलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम से काम फील करवा देगा। उसके साथ साथ एक चीज आप कर सकते हो, वो है अपना फिजिकल पॉस्चर चेंज करना। एकदम से खड़े हो जाइए, या फिर अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए। सडनली जब आप अपने फिजिकल पॉस्चर को चेंज करते हो तो आपका मेंटल पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अंडररेटेड चीजें जो कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया चीज जो मैं बताता हूँ और मैं खुद करता हूँ, वो है ठंडे पानी से मुंह धोना। भाई मजा आ जाता है, जैसे ही हम ठंडे पानी में अपना चेहरा सबमर्ज करते हैं तो मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स जो है एकदम से किक इन कर जाता है और हार्ट रेट कम हो जाता है, हम थोड़ा और काम महसूस करते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। गाड़ी चलाते हुए सीधा जाइए वैल्वोलिन AMTC, वहां पे प्रीमियम क्विक सर्विस आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ वहां पे जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी को वो ट्रस्ट और वो केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। द बेस्ट थिंग इज वहां पे है ANPR टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपके गाड़ी की कंप्लीट मेंटेनेंस हिस्ट्री को हम मेंटेन कर सकते हैं। और कैच ये है कि वहां जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वैल्वोलिन मर्चेंडाइज भी मिलेगा। तो मैं एक नंबर देता हूं, आप जाइए उस नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए उनसे, और बात करते वक्त बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। नंबर है 7765-5954, 7765-5954। तो आज ही कॉल कीजिए और विजिट भी कर सकते हैं वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पर। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक शेर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मतलब बहुत ही प्यारा सा एक शेर था, मैंने सुना कल, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। हजारों खामियां हैं मुझमें और मुझे मालूम भी है, हजारों खामियां हैं मुझमें और मुझे मालूम भी है, मगर एक शख्स है ना समझ, मगर एक शख्स है ना समझ, मुझे बेहतरीन कहता है। और जिंदगी में ऐसे ही शख्स की तो जरूरत होती है जानी। अगर ऐसा कोई शख्स है आपकी जिंदगी में तो कंसिडर योर सेल्फ लकी। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बेसिक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बचपन से हमें सुनी तो होगी मगर कोई इस पे ध्यान नहीं देता या फिर कई बार हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। वो ये है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों के टाइमलाइन से कंपेयर करते हैं, तो जो खुशी हमें मिलती है वो चली जाती है, वो खुद से ही हम छीन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। अगर कंपैरिजन करना ही है तो खुद से करिए ना। कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं और आने वाले दिन में हम कैसे होने चाहिए। सेल्फ कंपैरिजन सबसे बेस्ट कंपैरिजन होता है। और दूसरों के साथ अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो भाई जिंदगी में मिजरी ही मिजरी है, सैडनेस ही सैडनेस है। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई हमें खुशी लगता है मगर अंदर झांक के देखोगे तो पता चलता है ना कि सबकी लगी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। और उसका सबसे पहला स्टेप होता है कंपैरिजन को कट ऑफ कर देना लाइफ से। जैसे टॉक्सिक लोगों को हम कट ऑफ करते हैं, वैसे ही कुछ टॉक्सिक आदतों को भी कट ऑफ करना इंपॉर्टेंट है, एंड कंपैरिजन इज वन अमंग देम। और यही बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk waqif, alcohol.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो कल मुझे मम्मी ने एक फोटो भेजा, काफी बढ़िया फोटो थी, तो मैं चाहूंगा कि आप आंख बंद करके जो मैं बोलने वाला हूं उसे इमेजिन कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आंख बंद मत कीजिए, बस इमेजिन कीजिए। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अर्ली मॉर्निंग टाइम है, 5:30-6 बज रहे हैं, धूप निकल चुकी है। वो धूप होती है ना, मतलब जब वो आके चेहरे पे लगती है तो हमें काफी सुकून सा महसूस होता है, वैसी धूप। और वो धूप जो है उसकी बूंदों से रिफ्लेक्ट होके एक बहुत ही शाइनी पर्ल की तरह हमें दिखती है। और सुबह का ये नज़ारा, ठंडी हवा बह रही है, बहुत ही प्यारी धूप लग रही है, उसकी बूंदों से धूप जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और आप धीरे से गहरी सांस लेते हो और उस सांस को छोड़ते हो। यहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि लाइफ जो है इतनी तेज होने की जरूरत नहीं है, लाइफ को हम खामखा बहुत तेज बना देते हैं। कभी कभी जिंदगी में खुद एफर्ट डाल के इसको पकड़ के रोकना जरूरी है, थमना जरूरी है, रुकना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, आसपास क्या चल रहा है देखना जरूरी है, और मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और मुस्कुराते हुए आगे के दिन को आप फेस करते रहिए। और यही बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

यार गाड़ी का ख्याल रखना है तो सीधा जाइए ना वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड पर, बहुत ही बढ़िया क्विक सर्विस आपको मिलेगी, वो भी ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स के साथ। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बात कर रहा था वैल्वोलिन एएमटीसी के बारे में, जहां पे 100% ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी को वो केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। एंड वहां पे है डिजिटल कार पासपोर्ट, यानी कि ANPR टेक्नोलॉजी से कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी। और कैच ये है कि वहां जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक काफी कूल मर्चेंडाइज मिलेगा वैल्वोलिन का। एक नंबर मैं देता हूं, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदीप भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। नंबर है 7765595 7765 5954। आज ही कॉल कीजिए और विजिट कीजिए वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पर। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव। राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बहुत सारे लोग जो हैं वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं, 110 किलो का हो चुका हूं मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा हूं। और इसके बारे में बात करते हुए मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, और मेरा फ्रेंड जो है एक साइकोलॉजिस्ट भी है। थोड़ी अचंभे की बात जरूर है, मगर हाँ वो अलग रूट पे निकल गया। तो उसने मुझे बताया था कि यार हम क्या करते हैं कि इस वेट कम करने के चक्कर में ना अपने माइंड के ऊपर अननेसेसरी बहुत सारा वेट डाल देते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर उसने समझाया कि बॉडी वेट तो कम करना ही करना है, बहुत जरूरी है वो। उसके साथ साथ मेंटली कुछ वेट हमारे मन में रहते हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं, उनको शेड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, अनसेट कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, कुछ भी बात हो सकती है, या फिर कोई एक मेमोरी जो आपके मन में रह रही है वो निकल नहीं रही है और आपको तंग कर रही है। तो मेंटली कुछ वेट होते हैं, उनको निकालना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं चलता भाई, तो ये बात ध्यान रखिए। और ये बात बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

बोल रहे सब लोग, एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। लेट्स डू इट।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

कभी कभी आपने शायद फेस किया होगा जिंदगी में, किसी से आप बात करते हो या फिर किसी के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो वो बहुत अब्रप्ट तरीके से बिहेव करते हैं या फिर थोड़ा अनकॉल्ड बिहेवियर जो है उनके साइड से आ जाता है और आप सोचते हो यार मैंने क्या किया, मैंने ऐसा थोड़ा ना बोला कि मेरे ऊपर ऐसे भड़क गए। तो कभी कभी एक स्टेप पीछे लेना और ये समझना जरूरी है कि आगे वाला इंसान शायद वाउंडेड हो सकता है, शायद उसके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जो वो प्रोसेस नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया और उस मोमेंट में उससे वो निकल गया। तो कभी कभी कंपैशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस में, काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये समझना और ये जानना कि आगे वाला इंसान भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतों के साथ जूझ रहा है, शायद मैं भी उन सबका एक टोल उसके ऊपर हो रहा होगा, और पूछना कि भाई आप ठीक हो, कोई दिक्कत है बताओ मुझे, ये सवाल पे आगे वाला बंदा ऑफ गार्ड हो जाता है, मोस्टली ऑफ गार्ड हो जाता है। मगर हाँ, ये समझना, ये एक आइडिया रखना कि शायद उसके लाइफ में भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाई करके निकलने का वक्त आ चुका है। 2 बजे शुरू किया था, 5 बज चुके हैं, पार्टी अभी भी बाकी है और पार्टी कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे सिमरन आने वाली है। तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिएगा। और जाते जाते जाते हम यही दरख्वास्त है आपसे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे इसी सीट पर, आएंगे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। टिल देन एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: दिया अभी तो शुरुआत हुई है, रुक जा
1: रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा।
0: चार घंटे मेरे पास, मैं पूछती रहूंगी यार। मैं कहती सुनियो कि दादा की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। आज का दिन तो निकल गया, कल थर्सडे है, कल तो वीकेंड चालू हो जाएगा, कल तो इसी चक्कर में आप सुबह उठ के सारा काम निपटा लोगे, भाई साहब वीकेंड चालू होने वाला है ना। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा डाउनर आ रहा है, पूरा दिन आपका कैसा रहा वो बताइए मुझे, किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको, कैसा गया आपका दिन वॉइस नोट के थ्रू अगर आप मुझे बताएंगे तो आपकी आवाज से मुझे थोड़ा सा और भी मजा आ जाएगा सुन के, है ना, कि बंदा थोड़ा सा और अपनापन फील करता है। गुड इवनिंग के साथ भेज दो 3311063 पर, बाकी म्यूजिक का डोज मिलेगा आपको।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ.
5: जैकी श्रॉफ
4: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: रेडियो ऑलिव नंबर वन.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

काजोल जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सो मैं यही सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। सो काजोल की बात करें ना कि भाई बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, शाहरुख खान के साथ इनकी जो फिल्म्स हैं और या फिर शाहरुख खान के साथ जो यू नो इनका एक वो क्या केमिस्ट्री जो है ना फिल्मों में बहुत ही मतलब जबरदस्त है, चाहे वो बाजीगर हो, करण अर्जुन हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, या कुछ कुछ होता हो, या फिर कभी खुशी कभी गम, मतलब ये ऑल टाइम हिट रही हैं यार सारी फिल्में। एंड ऑन स्क्रीन शाहरुख खान के साथ बहुत ज्यादा मतलब इनकी केमिस्ट्री जो है मैच करती है। उसके साथ साथ अगर बात करें मतलब बॉलीवुड के जो स्टार हैं प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये सब जो है वो उनकी मिनिएचर डॉल है लंदन के एक लग्जरी स्टोर हैरिट्स में, जहां पर काजोल का भी है। सो या काजोल बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में जो है वो कैसी है वो मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन ऑन स्क्रीन मतलब वी लव हर यार, मतलब चाहे वो कुछ कुछ होता है फिल्म में अलग तरीके की, वो अंजलि हो या फिर सिमरन हो DDLJ की, अलग ही लेवल है यार। और कभी खुशी कभी गम में उनका अलग ही कैरेक्टर था, एकदम तुसी बड़े मजाकी हो यार। सो काजोल की कौन सी फिल्म है जो कि आपके दिल के बेहद करीब है बताइएगा मुझे 3311063 पर। वापस लौट के मैं आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रही हूँ, ओह माय गॉड, जिसको देख के मेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ गए।

0: ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. To bhaiya banaiye apni evening ko zabardast. Qatar ki number 1 RJ.
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास. जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

बहने ने यार किदा जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बता देती हूँ। दोहा फेस्टिवल सिटी वेंडर मॉल है, मॉल ऑफ कतर है, विलाजियो मॉल है, सिटी सेंटर, अल हज्म, लैंडमार्क मॉल, हयात प्लाजा, दोहा मॉल, पर्ल आइलैंड, जीवान आइलैंड एंड वेस्ट वॉक। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक्सक्लूसिव रिटेल प्रमोशंस मिलेंगी, ठीक है, स्पेशल रेस्टोरेंट ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए, वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस है, डिस्काउंट एंड पार्टिसिपेटिंग आउटलेट्स है, पर इसके साथ साथ चार मेजर रैफल ड्रॉज होने वाले हैं जहां पर आप एक्साइटिंग प्राइस के साथ साथ पांच ब्रांड न्यू कार्ड्स भी जीत सकते हैं। बताओ और क्या चाहिए आपको यार। सो गर्मी का टाइम है ना, समर के टाइम पे हम सब लोग मॉल्स वगैरह में घुसे रहते हैं, है ना, और ऐसे एरियाज में जाते हैं जो कि एयर कंडीशन है, जैसे कि इसमें मैंने जीवान आइलैंड एंड वेस्ट वॉक का बताया, ये भी एयर कंडीशन है। सो आप जा सकते हैं एंड इस हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। चक्को फिर अभी।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

योगिता दी की हलचल। सत श्री अकाल सिमरन कौर, आपकी साथ 6:06 और 30 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। यार कल ना मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब दो चार दिन से नोटिस कर रही थी लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। तो क्या है कि मेरे पास जो मेरा नेटफ्लिक्स है वो सिंगल स्क्रीन वाला ले रखा है मैंने, है ना। समहाउ मैंने अपने एक आध फ्रेंड को वो दिया था पासवर्ड, है ना, देखने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी लॉग इन किया ही नहीं, राइट। लेकिन मैं ये चीज फील कर रही हूँ कि भाई दो स्क्रीन आ रही है, क्योंकि मेरी एक स्क्रीन जो है वो चली नहीं रही है और मैं परेशान हो गई हूँ। मैं कॉल करके पूछती हूँ मेरे दोस्त से कि भाई तू यूज कर, इज लाइक नो। तो somehow पता नहीं किस तरीके से लॉग इन है सामने वाले के पास में, और मैं लॉग आउट कर रही हूँ, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, भाई वो हो ही नहीं रहा है। और मैं देख रही हूँ कि सीरीज जो है वो देखी जा रही है और मेरी स्क्रीन जो है वो चल नहीं रही है। फिर मैंने जाके अपना पासवर्ड जो था वो चेंज किया, फिर मेरा नेटफ्लिक्स जो था वो बैक टू नॉर्मल हुआ। चलो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आजकल ऑनलाइन अकाउंट्स जो है, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें भी हैक हो रही हैं। सो मेक श्योर कि आप पासवर्ड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो रखिए। नेटफ्लिक्स एंड ऑल तो आप दे देते हो अपने दोस्तों को, है ना, पासवर्ड, लेकिन इंस्टाग्राम, जीमेल, व्हाट्सएप, ये अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए। यस ऑफ कोर्स, जिसमें आपका बहुत सारा मोनी है, मतलब आपका कार्ड है, आपका एटीएम है, उसका पिन नंबर तो आप किसी को भी मत दीजिएगा। तो वो सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा ध्यान करिए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है और कोई नहीं खा रहा तरस। तब नहीं आता जब अकाउंट हैक हो जाता है भाई। अभी अफसाना खान का अकाउंट इंस्टाग्राम का हैक हो गया था 2 दिन पहले। सो या कुछ भी हो रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ हो रहा है यार।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
4: हेलो नमस्कार. मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो.

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: Life 20. 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

माय लव माय लाइफ और ये सब कुछ। और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? देखो यार, लाइफ में सब कुछ बढ़िया और भी ज्यादा हो जाएगा अगर मौसम जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन आज मैंने देखा है कि कतर के कुछ एरिया में आज बारिश हुई है, शाहानिया वाली साइड आई गेस बारिश हुई है। सो लेट मी नो अगर आपने आज की जो बारिश के छींटे पड़े थे आपने देखे हैं वो। भाई कल बहुत ही तगड़े वाली ह्यूमिडिटी थी, अभी जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ने लग जाता है। 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी तक फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही गर्म है यार। विंड जो है 12 किलोमीटर पर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी जो है 59% है। आज मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी और आफ्टरनून में कम थी, लेकिन अभी इवनिंग में तो भाई फट्टे चक्के पे हैं यार ह्यूमिडिटी ने। पानी पीते रहो और अपना

0: 106.3 FM. यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: फिर
1: वायरल
0: में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वाइफ जो रूठ के अपने पेके चली जाती है, मतलब अपनी मम्मी पापा के घर पे चली जाती है। ये सोनीपत हरियाणा इंडिया की बात है। सो इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड जो है वो उसको मनाने पहुंचता है, लेकिन अकेला वो नहीं मनाने आता है, वो एक सपेरा बीन बजा रहा है घर के बाहर, और वहां पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी, सब लोगों को इतना फनी लग रहा है। सो बीन बजा के अपनी पत्नी को वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई अभी गलती हो गई, अब लड़ाई हो गई, अब तू वापस लौट जा। सो या इतनी सारी चीजों के बाद वाइफ मान गई यार, मतलब काफी क्रिएटिव आइडिया है, लेकिन ये सांप और उसके बाद सांप की बीन बजा के वाइफ को घर के बाहर बुलाना, भाई बीवी है सांप तो है यार। खैर 6:53 स्टूडियो की घड़ी पे ये तो उस बंदे ने सपेरे को बोला होगा, क्योंकि उसी वजह से वो वापस आई है। Radio on

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

रहे हो कितना दिखी अलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। 7:05 हो चुके हैं और आज ड्रीवर शिव्या में हम एक फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका गाने चलाते हैं पहले। फिल्म शाहरुख खान, ऋषि कपूर एंड दिव्या भारती। सो ये फिल्म के बारे में बात यह है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को नहीं देखा। शाहरुख खान का ये कहना है कि भाई वो अपनी फर्स्ट और लास्ट फिल्म जो है वो नहीं देखना चाहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि अरमान कोहली को साइन किया गया था शाहरुख खान के रोल के लिए, एंड उसके बाद क्या हुआ था कि जी अरमान कोहली और शबनम कपूर जो प्रोड्यूसर थी दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो उन्होंने पहले अरमान के साथ दो फिल्में साइन की थी, लाइक एक तो दीवाना और दूसरी थी इंसाफ की देवी। बट अब लड़ाई हो गई है तो दोनों ने बोला भगले यहां से, ठीक है। एंड दिव्या भारती ऋषि कपूर का लव इंटरेस्ट था इसमें, बट अगर एज गैप की बात करें दिव्या भारती और ऋषि कपूर के बीच में 22 साल का जो गैप था, जिनकी 22 साल छोटी थी वो ऋषि कपूर से। और भी इस फिल्म से जुड़ी हुई

0: करते हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। लेकिन क्या आपने दीवाना फिल्म देखी है? तो कैसी लगी थी बताइएगा मुझे।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल है दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल न।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बात तो सही है यार, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, लेकिन जरूरी भी नहीं है यार। किद्दा जी आपके साथ दीवाना फिल्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दीवाना फिल्म की एल्बम जो थी 1992 में सबसे हाईएस्ट सेलिंग थी, एंड पहले ये जो शाहरुख खान का रोल था, सबसे पहले सनी देओल को ऑफर हुआ था, सनी देओल ने इस फिल्म में काम नहीं किया। फिर धर्मेंद्र जो थे ना, तो उन्होंने शाहरुख खान का नाम जो है वो सजेस्ट किया गुड्डू धनोआ को, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, वो उनके कजन थे धर्मेंद्र जी के। ठीक है, अब शाहरुख खान जो थे वो श्योर नहीं थे कि भाई ये फिल्म को मैं साइन करूं कि ना करूं, फिल्म ए ग्रेड है बी ग्रेड है मुझे नहीं पता। तो जब उनको पता लगा कि ऋषि कपूर सर ने फिल्म को साइन कर लिया, तो उन्होंने बोला ठीक है अब मैं ये फिल्म जो है वो करने वाला हूँ, है ना। सो और अगर इस फिल्म की बात करें, इसमें गाने की जैसे मैं आपको बता रही थी, तो इसमें वो गाना था ना ऐसी दीवानगी, तो ये जब पहली बार ऋषि कपूर ने गाना सुना, तो उन्होंने बोला कि यार प्लीज ये गाना मेरे पे पिक्चराइज करना, क्योंकि ये गाना बहुत प्यारा है। लेकिन समहाउ फिर उनको समझाई गई ये चीज कि भाई ये जो लिरिक्स हैं वो शाहरुख खान के कैरेक्टर के लिए ही सूट करते हैं, तो वो ये गाना आपके ऊपर शूट जो है वो नहीं, मतलब शूट जो है वो नहीं कर सकते, पिक्चराइज जो है वो हम सॉरी नहीं कर सकते हैं। बट अब ये फिल्म बनी, गाने हिट हुए, फिल्म तो अभी भी हमको याद है इसका म्यूजिक एंड ऑल, है ना। बट शाहरुख खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से थे उनके प्रोड्यूसर वगैरह थे, क्योंकि उनको पेमेंट जो थी वो नहीं मिली थी, और बहुत सारी इंटरव्यूज हुई और बहुत सारे टीवी चैनल्स में उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है सबको बताया कि भाई मेरे को पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। सो या शाहरुख खान की बात हो रही है, तो

0: रेडियो ऑलिव गोरगेदर ये जियो बिंदास। इसी घंटे हम नेम गेम भी खेलेंगे और रियलिटी चेक लेके आ रही हो बस।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: Benji. एक नंबर. बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी चीज आपको बताने वाली
1: हूँ. रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ.
0: सो इसको ध्यान से सुनिएगा. कहते हैं कि पीपल गिव यू व्हाट दे आर नॉट व्हाट यू डिजर्व. ओके, सो व्हाट यू डिजर्व यू गिव टू योरसेल्फ. हम हमेशा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि हम जैसे हैं लोग जो है वो हमको वैसी ही चीजें देंगे, हमारे लाइफ में वैसे ही ट्रीट करेंगे. लेकिन जो है लोग जो है वो वही चीज वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे जो वो अंदर से फील कर रहे हैं, जैसा वो है. ठीक है, बट अगर आप जो चीज डिजर्व करते हो ना वो आप अपने आप को ही देते हो. अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो आप खुश अंदर से, जब तक इंसान खुद से नहीं होगा बाहर का इंसान आके कोई खुशी नहीं उसको दे सकता है. सो ये चीजें खुद से जो है वो शुरू करती है. जब आपको ये चीज समझ लगने लग गई ना कि जो चीज आप डिजर्व करते हो वो आप खुद को ही दोगे, बाहर से किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से जी रहा है, अलग अलग ट्रॉमा से जो है वो जूझ रहा है. सो वो इंसान, मैं आपको एक एग्जाम्पल ट्रोलिंग का दे देती हूँ. सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हो, सम हाउ वो आ जाएंगे आपको ट्रोल करने के लिए, नेगेटिव लिखेंगे. वो एक्चुअली मुझे लगता है कि उन लोगों को कसूर नहीं है, वो अंदर से अनहील्ड है इतने कि वो भरे बैठे हैं कि भाई उनको कोई भी मिल गया वो कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो जब आपको अंदर से सुकून होता है ना, जब आप अंदर से अपने आप को खुश रखना चालू करते हो, फिर ये चीजें आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती. फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग आपको अच्छा ट्रीट करें. क्या बात कर दी सिमरन कौर, ऐसी हूं मैं. वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूं.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:46 46 ਮਿੰਟ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਖੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। जाते कि आपका नाम अभी कभी ले लिया जाए तो बिल्कुल यार, आप बस हुक्म करो, अपना नाम बस लिख के भेजो, मैं आपका नाम बोल दूंगी यार। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दो। और चलो मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। रिश्विन, रोज, बबीता, रोशिता, येंटी, सजा, CBR, जुनैद, भाई बड़े लंबे लंबे नाम लिख लिख के भेज रहे हो, पूरी लिस्टें भेज रहे हो यार, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद साजिद, स्मिता, महबूब जट, इंतशाम अब्बासी, मेनुका, पाली, जुनैद, लतीफ़ुल्ला, चलिका, श्रीनिवास, डेजी जी, हुमायूं, आसमा, मास्टर जी, थैंक यू सो मच, आमार जी, थैंक यू सो मच, उस्मान, यूनस जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, स्मिता जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाबाज गुल जी, थैंक यू सो मच, बीर कुमारी, सुरमन प्रधान जी, थैंक यू सो मच। ये मुझे वॉइस नोट क्यों भेज रहे हो दोस्त, मैं वॉइस नोट बोलते बोलते कैसे सुन लूंगी यार, क्या बात कर रहे हो यार। अक्सा इंतशाम जी, थैंक यू सो मच, दानिश जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच, कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सईद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो 3311063 पर, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। शेख साहब, थैंक यू सो मच, सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निर्मल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, महरीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रे जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मुसर्रत जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अमित शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के मुझे भेज दो, ठीक है। मैं आ रही हूँ बस थोड़ी ही देर में, प्रेयर का टाइम होने वाला है।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ए आर रहमान का जादू है यार ये, सजना के सजदे में, फ्रॉम द मूवी तेरे इश्क में। सोने की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल 8:16 और

0: जबरदस्त इवनिंग्स में इतने बढ़िया वाले गाने चल रहे हैं, इतना बढ़िया मौसम होता है इतने रोमांटिक गानों के साथ, तो होए मौसम का मजा ही डबल हो जाता है। पता है मैं क्या कर रही थी, मैं ना मेरी ये आदत है, मैं आगे आगे आगे का टेम्परेचर जो है नोटिस करती रहती हूँ कि कब जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। सो अगस्त जो है वो दिखा रहा है कि भाई बहुत एक्सेसिव हीट होने वाली है, लेकिन सेप्टेम्बर से जो है एक्सट्रीम हीट जो है वो थोड़ा सा नीचे होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो या टेम्परेचर 35 और 40 के बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। पता नहीं है मैं क्यों करती हूँ, बट मेरे दिल को जो है वो सुकून मिलता है, और मेरे दिल को सुकून मिलता है आप लोगों की आवाज सुन के, जो कि मुझे अभी मौका मिलने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: इस सॉन्ग को जरा ध्यान से सुनिए और बताइए, इस धुन को जरा ध्यान से सुनिए और बताइए कौन सा गाना है। जली दिमाग की बत्ती जली, सो बताओ गाना कौन सा है। आपको लिखना नहीं है, प्लीज ये काम मत करिएगा, अपनी उंगलियों को कष्ट मत दीजिएगा, अपनी जबान को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और बताइए कि ये कौन सा गाना है। हे सिमरन, अपना नाम जो है बताने के बाद गाना गा भी सकते हैं, बढ़िया रहेगा, लेकिन आप गाना बताना चाहें तो भी चलेगा। भेज दीजिए 3311063 पर। मेक श्योर कि आप जो है, मैं आप वापस से सुना रही हूँ, रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि यार ये गाना कौन सा है, मुझे 2-3 बार सुनना पड़ेगा। तो होगी लाला लाला, अब आप भी कर लो यार।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मैं ये सुने हो कितना दिखी अलजल सस्याकाल सिमरन कौर है आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: मुझे लगा था ये बहुत फेमस है और आपको समझ लग जाएगा वेरी ऑनेस्ट सिर्फ चार आंसर जो हैं वो सही आए हैं बाकी सब गलत आप लोगों ने भेजा है और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब आप ये लिख के भेजते हो कि मुझे नहीं पता ये मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो बट आप अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बोलो कि नहीं पता है तो गाना है कल आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूंगी 8:34:55 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और
3: आसमान कहता है रब से
0: हाय
3: तूने चांद दो क्यों बनाए
0: और ये गाने के लिए तो

एक चीज याद रखना, ये गाना दिल में छुरियां गला देता है यार। और ब्यूटीफुल ट्रैक, अब सिमरन कौर का शो सुन रहे हो, ये सारी चीजें तो आपको सुनने के लिए मिलेंगी ना।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

शाम तक तलक भटको, कल वीकेंड आ जाएगा, जो करने करो, अकेली नहीं आऊंगी, वीकेंड साथ में लेके आऊंगी। मैं किसी सोने की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। सो आज की रात अच्छी नींद लेना और ये सोचना कि आप क्या कर सकते हो, जल्दी से काम निपटा के जल्दी से ऑफिस से कैसे निकल सकते हो, जल्दी से आपका वीकेंड कैसे चालू हो सकता है। बट ओवर थिंकिंग नहीं करनी दोस्त, ठीक है। बढ़िया सी सीरीज देखना कोई और बढ़िया सा खा लिया होगा, और खाते ही एकदम मत लेट जाना, ठीक है, वरना फिर वो खाना पचता नहीं है, ठीक है, समझा करो थोड़ा सा। सो कल शाम को 5 बजे होती आपसे मुलाकात। टिल देन खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is We Muskan with you. Our show का नाम है Midnight Lounge. सिलसिला शुरू हो रहा है जहां पर बात करेंगे कुछ किस्से, कुछ कहानियों की और सुपरहिट गानों की. सो आज बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का बर्थडे है जिन्होंने हमें ये सिखाया कि परफेक्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओरिजिनल होना जरूरी है. सो हैप्पी बर्थडे टू काजोल. 90s में जब हीरोइन से एक परफेक्ट इमेज की उम्मीद की जाती थी, काजोल बिल्कुल अलग थी. वो जोर से हंसती थी, इंटरव्यूज में जो दिल में होता था वही बोलती थी और कैमरा के सामने भी किसी और जैसी बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती थी. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन हो, गुप्त की मिस्टीरियस ईशा हो या फिर माय नेम इज खान की मंदिरा हो, हर रोल में एक कॉमन थी, वो थी ऑनेस्टी. सो शायद इसी लेना काजोल सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बनी, वो हर जनरेशन की फेवरेट बन गई. नाउ शी इज 52 ईयर्स ओल्ड. कभी कभी दुनिया में ना हमें परफेक्ट बनने के टिप्स मिलते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, लोग परफेक्शन को एडमायर करते हैं और ओरिजिनैलिटी को याद रखते हैं. सो आज एक सवाल आपसे, काजोल की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे देखते ही आपको लगा था कि यार इस रोल को इससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता. 3311106 इज माय नंबर और शुरू हो चुका है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट वाज. और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. एक छोटा सा गेम खेलते हैं. मैं सिर्फ दो सेकंड की आवाज का नाम लेती हूँ और आप पहचान जाओगे. टुडुम. बस इतना सुनते ही शायद आपके दिमाग में नेटफ्लिक्स का वो लोगो याद आ गया होगा. मजेदार बात बताती हूँ. बात यह है कि साउंड जो सिर्फ दो सेकंड का है लेकिन इसके पीछे महीनों की रिसर्च थी. नेटफ्लिक्स चाहता था कि एक ऐसी आवाज़ हो जो सस्पेंस भी क्रिएट करे, एक्साइटमेंट भी, और हर शो शुरू होने से पहले एक छोटा सा इमोशन भी. और देखिए आज दो सेकंड की वो आवाज़ दुनिया की पहचान बन चुकी है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना. कभी कभी हमें अपनी पहचान बनाने के लिए लंबी स्पीचेस की ज़रूरत नहीं होती. बस एक छोटा सा सिग्नेचर काफ़ी होता है. और आज का ख्याल भी यही है कि अगर आपकी लाइफ का भी एक थीम म्यूज़िक होता तो वो एनर्जेटिक होता या थोड़ा सा सुकून भरा. सोच के बताइए. 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

So, आज एक ट्रैफिक सिग्नल की कहानी आपको सुनाती हूँ. You will love it. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो एक सिग्नल जो गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि साइकिल चलाने वालों के लिए फेमस है. नीदरलैंड्स के कुछ शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं. ये सिर्फ टाइमर से नहीं चलते बल्कि सेंसर से देखते हैं कि कितने साइकिलिस्ट सिग्नल पर वेट कर रहे हैं. अगर भीड़ ज़्यादा हो तो ग्रीन लाइट उन्हें पहले मिल जाती है. कितनी सिंपल सी बात है लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत सी सोच थी. अच्छा शहर वो नहीं जहाँ पर बड़ी बड़ी रोड्स हों. अच्छा शहर वो होता है जो हर इंसान के सफ़र को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझे. और शायद रिलेशनशिप भी ऐसे ही होता है ना, जहाँ हर किसी को अपनी बारी मिलती है वहीं बैलेंस बनता है बॉस. सो आई विल से कि मैं जब रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि नीदरलैंड्स में साइकिल बहुत चलाते हैं लोग. जो टूरिस्ट हैं वो भी घूमने जाते हैं तो साइकिल चलाते हैं. जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी साइकिल चलाना पसंद है. सो इसीलिए सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, चाहे आप बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए या कार चलाइए. सो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होना चाहिए. जब हर कोई इक्वल मेहनत कर रहा है तो यू नो बैलेंस उतना ही होना चाहिए. अगर आप किसी एक चीज़ को अपने शहर में इम्प्रूव कर पाते तो आप बताइए आप क्या करते. बाय द वे कतर में तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट. यहाँ पे हर मौसम के हिसाब से यू नो हर चीज़ बदल जाती है. आप मुझे बताइए आप अपने यू नो जहाँ से आते हैं वहाँ पर कौन से चेंजेस हैं जो आप चाहते हैं. 3311063 इज़ माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Zabardast Evening. Raat ko sone se pehle, ek minute ke liye phone side mein rakhiye aur khud se sirf 3 sawal poochiye. Aaj kya acha hua? Aaj maine kya seekha? Aur kis baat ke liye aap thankful ho? Interesting baat ye hai ki duniya ke kai sare CEOs aur leaders lambi diary nahi likhte, bas ye 3 questions khud ko poochte hain aur likhte hain. क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़ा रिजोल्यूशन नहीं, रोज का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन काफी होता है. यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं ना बहुत थैंकफुल होने की कोशिश करती हूँ. उससे ना बड़ा सुकून मिलता है. ऐसा लगता है कि नहीं यार, सब कुछ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम दिन भर दुनिया को आंसर देते रहते हैं लेकिन खुद से सवाल पूछना भूल जाते हैं. सो यू टेल मी, अगर आज की रात आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी हो और खुद को कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311 1063. Stay tuned, Jio Bindas.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास। ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ये है मिडनाइट लाउंज।

गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. बहुत ही खूबसूरत से गानों के साथ सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. सो कभी कभी एक तस्वीर ना पूरी कहानी से ज्यादा याद रह जाती है. सिनेमा की दुनिया में ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिनकी स्टोरी शायद लोग भूल गए, लेकिन उनके पोस्टर्स आज भी आइकॉनिक हैं. एक अच्छा पोस्टर सिर्फ हीरो हीरोइन की फोटो नहीं होता, वो एक प्रॉमिस होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इनविटेशन होता है. और मुझे लगता है कि हम भी अपनी लाइफ का एक पोस्टर लेकर घूमते हैं. लोग पहले हमारी पर्सनैलिटी देखते हैं, बाद में हमारी कहानी जानते हैं, लेकिन पहली इम्प्रेशन से मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बस वही बात है, असली कैरेक्टर सामने आ जाता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि कौन सी फिल्म का पोस्टर देखते ही आज भी उस मूवी की आपको याद आ जाती है. बाय द वे, अगर पुरानी आइकॉनिक मूवीज़ की बात करें तो पोस्टर ना डिजिटली नहीं बनते थे, हैंड पेंटेड होते थे, इसीलिए उनके पोस्टर्स आज भी लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं. सो उनमें से कोई ऐसा पोस्टर जो आपको आज भी बहुत याद हो बताइएगा ज़रूर. नंबर है 3311063. Stay tuned, Jio Bindaas.

Have you noticed कि कुछ conversations फोन पर कंप्लीट नहीं होती, मैसेज पर भी नहीं, बस एक कप चाय के साथ सामने आमने बैठ के ही हो पाती है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. जब हम सामने बैठकर बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, स्माइल देखते हैं, आंखों के एक्सप्रेशन देखते हैं और बीच की खामोशी भी. शायद इसीलिए चलो चाय पे मिलते हैं, ये जो इनविटेशन है ना, ये कनेक्शन है. कभी कभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना एडवाइस में बिल्कुल नहीं होता, बस साथ बैठने में होता है. सो अगर अगली बार कोई दोस्त आपसे कहे कि चल यार शाम को चाय पी के आते हैं, तो उसे मना मत कीजिएगा. हो सकता है कि उसे आपकी ज़रूरत हो. अगर अभी इसी वक्त किसी के साथ चाय पर आप बैठ सकते हो, तो उसे फटाफट से कॉल करो और चले जाओ. क्योंकि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन सुनना ज़रूरी है, एडवाइसेस देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सो आज एक कंट्री की बात करते हैं जिसे दुनिया से एक अलग सवाल पूछने की ज़रूरत है, विच इज़ भूटान, जहाँ सिर्फ पैसे या फिर इकोनॉमी ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लोग कितने खुश हैं ये भी मेजर किया जाता है. वी हैव यू नो कॉन्वर्सेशन ऑन दिस बिफोर ऑल्सो. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ पैसे का कैलकुलेशन करते रहते हैं कि कंट्री की ग्रोथ क्या है, कौन कितना कमा रहा है, लेकिन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सिर्फ भूटान निकालता है. कितनी खूबसूरत सोच है ना. हम अक्सर पूछते हैं कितना कमा लिया, कितना खरीद लिया, घर है या नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये पूछते हैं कि आज तुम खुश हो कि नहीं हो. शायद सक्सेस का असली स्केल बैंक बैलेंस नहीं है, दिल का बैलेंस है. इवन आई वॉज वॉचिंग वन रील टूडे जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने कहा कि ये जो अमीर लोग हैं इनके बच्चों के पास एक अलग तरह का डिसिप्लिन है. ये अपने बच्चों को कुछ अलग चीज़ें सिखाते हैं. इनका पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, ये सिखाते हैं बच्चों को कि आपको अपने हर काम को खुद करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वैसे ही खुश भी रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. सो आपके हिसाब से खुशी की डेफिनेशन क्या है बताइएगा ज़रूर. नंबर है 7331-1063 एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

शो को खत्म करने से पहले आज रात का अगर थोड़ा सा आपको वक्त मिले तो एक बार आसमान जरूर देखिएगा। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, विच इज AWE, awe, एंड द स्पेलिंग इज AWE। जब हम स्टार्स, समुंदर या फिर माउंटेन्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग को एहसास होता है कि दुनिया हमसे बहुत बड़ी है, और उसी पल हमारी छोटी छोटी टेंशन भी थोड़ी छोटी छोटी सी लगने लग जाती है। इसीलिए शायद बचपन में टेरेस पर बैठकर तारे देखना इतना अच्छा लगता था। आसमान तब भी वही था और आज भी वही है, बस देखने का जो वक्त है वो कम हो गया है। सो जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि आखिरी बार आपने बिना किसी वजह सिर्फ तारे देखने के लिए आसमान कब देखा था। मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। मिलते हैं कल और कहानियों के साथ, और बाय द वे कल वीकेंड भी है, सो वी विल हैव अ गुड टाइम। ऑफ कोर्स बहुत सारे सुपरहिट गाने आप इंजॉय करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Dog. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.